0: थैंक यू, थैंक यू सो मच।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नादान दिल।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: है।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
1: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
2: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
4: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Ready, throw!
2: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
3: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: 7:18 minute on this Wednesday ki subah, and jab doston ka birthday aata hai to usko manana to chahiye hi. And a friend of the show, the Big Breakfast ke friend hai Nikhil, with me on the phone line. Good morning.
3: Good morning
2: Sid. Good morning Sid. Aaj to happy birthday gana padega Nikhil.
4: Happy birthday.
2: Nikhil, many many happy returns of the day from all of us at Big 106.2. But the tragedy is ki Nikhil's family is not here yaar. To aaj kya matlab sham ko Zoom call pe happy birthday hoga, kya hoga?
3: Yes, Zoom call पे होगा. Wife का खुद का cake shop है.
2: Oh, wow, that's amazing, यार. So मतलब कुछ delivery वगैरह expect कर सकते हो आज शाम को या or not?
3: नहीं, कुछ accept नहीं कर रहा हूँ.
2: But how about your friends? I'm sure you have a lot of friends out here. तो कुछ तो plan किसी ने बनाया होगा आपके लिए.
3: हाँ, अभी तो surprise ही होगा.
2: Surprise ही होगा. Yeah, that's the best kind of plan. तो बताओ कि आज मैं आपकी बर्थडे पे अगर पूछूं कि what is your favorite song, a song that actually defines Nikhil, something that you really, अगर एक favorite गाना आपको choose करना हो on your birthday, a present from me, what would it be?
3: मैंने वो ये वाला शाहरुख खान का जो song है ना, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा खाऊं,
2: चांद तारे तोड़ लाऊं, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना. अमेजिंग है निखिल, दैट्स अ एप्ट सॉन्ग फॉर यू. एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद. हियर इज विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड मे यू बी यूनाइटेड विद योर फैमिली वेरी वेरी सून. यहां पर बुलाओ यार जल्दी, थोड़ा वेकेशन वगैरह पे.
3: हां हां, बुलाऊंगा.
2: चलो, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस.
3: थैंक यू
2: बाय. ये है निखिल, हमारे आज के बर्थडे स्टार, एंड इट्स अ सॉन्ग दैट नॉट जस्ट डिफाइंस निखिल बट ऑल्सो ऑल ऑफ Our love for Shahrukh Khan. Chaand Taare Tod Laun, Abhijit ka ek classic gana, right here on The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
2: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: Morning at 7:27 on this Wednesday, ki subah 8th of July, 33 degrees Celsius right now. Humidity very very high, 80% humidity hai. Winds blowing at just 13 kilometers per hour. Highs of 37 right now, lows of 33 degrees Celsius.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है Sid on the Big Breakfast only on Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: With Big Ticket this summer, every ticket could spin big.
1: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
0: Our new big spin game could land you up to 1 million dirhams.
1: And 5 consolation prize winners of 100,000 dirham each.
0: Plus weekly cash e-draws all through the month.
1: Summer's hottest prizes await.
0: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsurersMarket.ae.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ncfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
5: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग।
6: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
5: या राइट, नो इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
6: रियली?
5: या, एंड विद द इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
6: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
5: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
9: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: Morning is 34 degrees Celsius right now. Nice sunny warm start to this Wednesday morning. Humidity kafi high, 73%. Winds at just 11 kilometers per hour. Highs of 36 right now. Lows of 33 degrees Celsius.
9: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
11: Big 106.2.
9: Big 106.2. Song of the Hour brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: लिस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अलगिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: There's an excitement in the air. The whole city's waiting for the big match to start. And that's when Papa John's Pizza Tower makes the night complete. 3 pizzas and sides, all in one towering box, in 3 sizes. Plus ice cold Coke, enough for everyone. Order now on the Papa John's app. Papa John's, better ingredients, better pizza.
7: Thinking about looking and feeling your best? At Zuleika Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zuleika Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment.
0: The Big Mix miss किया गया?
8: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
9: बिंदी बड़ा क्यूट नाम है और आप आवाज मतलब इतनी क्यूट आवाज है आपकी, क्या करते हो बिंदी?
8: थैंक यू
9: बस हम यही करते रह जाते ना, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं खीकी करके। इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है बताओ मुझे।
8: वो एक जो वो दिल में नहीं रखती है कुछ भी और बोल्ड सामने बोल देती है,
9: अच्छी बात है ना। वो तो
8: वो अच्छी लगती है बात।
9: एंड एक्टर भी एकदम A1, मतलब शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना।
8: ब्रिलियंट एक्ट्रेस है पर इतनी मूवी नहीं आई।
9: इतना सोच के जो बोला है कि यार अच्छा है जो बोल रही है सौरा, अग्री कर लेती हूँ चुपचाप।
8: Cheer
0: your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: Unusual traffic this morning at 311 heading north going towards Arabian, around the Arabian Ranches. Motor cities in north Jakar, Arabian Ranches. तक आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। इज एन इंसिडेंट बिंग रिपोर्टेड आउट देयर एज वेल, सो या होप एवरीथिंग इज फाइन। ये 5 से 6 मिनट की देर दिखा रहा है, सो बी केयरफुल आउट देयर। देन हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स पोर्ट सिटी एज वेल फ्रॉम मोटर सिटी, यूल फाइंड अ बिट ऑफ स्ट्रेच ऑफ ट्रैफिक आउट देयर 311 पर गोइंग साउथ। देन चलते हैं अप नॉर्थ, 44 का ट्रैफिक का बिल्डअप होना शुरू हो चुका है गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 अलखेल रोड की बात कर रहा हूँ। देन देयर इज 311 का कपल ऑफ पॉकेट्स ऑफ ट्रैफिक, वन इज एज यू हेड साउथ फ्रॉम सिटी सेंटर जाया, एंड देन सिटी सेंटर मिर्दिव से गोइंग साउथ towards Alwar ka one also unusually congested this morning. Then there's E11, the usual Alnada interchange one, and 611 Emirates Road par milegi aapko 3-4 minute ki der heading south going towards Alavir.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
11: Paida to main bhi sharif hua tha, par sharafat se apni kabhi nahi bana. हम भी तो देखे कि हम से बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:08
1: 6.2 The Beat of Bollywood.

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemint.ae.
3: When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: There is a weather update, weather warning आज रात के लिए. Red alert है that you know visibility might get affected in certain areas. Fog की possibility है. That's what the NCM is saying. So please be very careful. It's 34 degrees Celsius right now. Humidity at 69%. Highs of 36. Lows of 33 degrees Celsius.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: इस बार इससे पहले कि मैं कुछ भी कमिट करूं, I'm going to do a bit of a phone test. Hello, hello, testing 1 2 3 1 2 3. Are you there?
2: Hello. Hello, hello, hello.
1: हाँ, दो आवाज सुन ली. Okay, now let me commit to what we're going to do. It's going to be the spell battle.
3: Participate in the spell battle contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Xos Al Mayrid Ras Al Khaimah.
1: All right, the most exciting part of the show, a chance for you potentially to win an amazing, unforgettable staycation at the Rixos Almirid in Ras Al Khaimah. Tayyaba, you've been very, very patient. Kitni buri tarah se aap jana chahti hain ek staycation? Batao.
2: Bahut buri tarah se, ab to holidays bhi start ho gaye hain.
1: Kya baat hai, kya nukta laga, kya bolti, tarikhe se, wah, kya tarikhe se aap bolti hain, tarika. But I've got also on the phone line, hello, what's your name, ma'am?
2: Amreen.
1: Amreen? Kya hal chal hai?
2: बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ. मैं भी बहुत बुरी तरह से जाना चाहती हूँ.
1: चलो सही है यार, बट ओके, देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा कर पाता है इन द स्पेल बैटल. ऑलराइट, इट्स गोना बी अमरीन वर्सेस तैयबा. इसमें होगा ये कि मैं आपको तीन वर्ड्स के स्पेलिंग पूछूंगा, ठीक है? ये वर्ड्स जुड़े हुए होंगे, विल हैव समथिंग टू डू विद अ वेकेशन, स्टेकेशन, छुट्टियों से जुड़े ये वर्ड होंगे. For example, yes. Suitcase, it could be a destination, all right? अगर आपको लगता है कि आपको स्पेलिंग पता है तो आपको अपना नाम चिल्लाना है बजर की तरह, लेकिन पहले बिग लगाना है, all right? Big तैयबा या बिग अमरीन, all right?
2: Yeah, all right.
1: चलो फटाफट एक बजर टेस्ट करें इन 3 2 1 गो.
2: Big अमरीन.
1: वेरी गुड यार, ये हुई ना बात. बड़ा कंपेटिटिव माहौल यहाँ पर है. आर यू गाइज रेडी? शुड आई स्टार्ट योर टाइम? कोई डाउट वाउट तो नहीं है? कुछ पूछना पाछना तो नहीं है?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल.
1: जीतने जातने की तरफ चलें?
2: यस.
1: स्टेकेशन वेकेशन रेडी? रेडी. ऑल राइट, द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस मॉर्निंग इज पैनोरामिक.
2: बिग अमरीन.
1: बिग अमरीन बोलिए. अमरीन.
2: पी ए एन ओ आर ए एम आई सी.
1: पी ए
2: पी ए एन ओ आर ए एम आई सी.
1: एम आई
2: पी
1: सी फॉर
2: कैट.
1: बिल्कुल सही जवाब. इज 1-0 इन फेवर ऑफ अमरीन बकअप तैयबा. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज रेडी?
2: क्या रेडी?
1: सिलुएट.
2: बिग तैयबा.
1: बिग तैयबा बोलिए.
2: सी आई
1: सिलुएट. इंटरेस्टिंगली इसका हिंदी में भी ऐसी वही वर्ड सलवट होता है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिलुएट?
2: एस आई.
1: कौन है ये? तैयबा. एस आई
2: एस आई एल एच ओ यू ई डबल टी ई.
1: गूगल सर्च किया क्या?
2: थोड़ा सा
1: गूगल सर्च किया. क्या बात है, नाइस यार, नॉट बैड एट ऑल. क्योंकि सी आई से सीधा एस आई और फिर एल. वेरी ना, वेरी नाइस. चलो, आई डोंट केयर इफ यू गूगलिंग इट, हूएवर गिव्स मी द आंसर फर्स्ट दे आर गोना विन. ऑलराइट, इट्स 1-1, completely tied. It's time for a penalty shootout. It's Amreen versus Tayyaba. Your tiebreaker question is, are you guys ready?
2: Yeah, ready.
4: Yes.
1: क्योंकि आप Google search कर रहे हो, मुझे बताओ Bougainvillea का spelling क्या होता है?
2: Big Amreen.
1: Big Amreen.
2: What did you say?
1: अरे Bougainvillea.
2: तैयबा
1: बोलिए.
2: B-O-G-U-L-M-A-N-I-A.
1: गलत जवाब. अमरीन, एनी आंसर?
2: B-O-G-U-L-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G
1: ये खारिज करता हूँ मैं, ये बहुत ही मुश्किल था. ऑलराइट, सो हियर्स द सीरियस टाई ब्रेकर. आर यू गाइस रेडी?
4: या रेडी.
1: हु इज गोना टेल मी द स्पेलिंग ऑफ मिसलेनियस?
4: तैयबा.
1: बिग तैयबा.
4: एम आई.
1: अमरीन, गो फॉर इट. अमरीन. एम आई.
4: एम आई एस टी एल एल ए एन ई ओ यू एस.
1: कौन था ये?
4: अमरीन.
1: अमरीन. एम आई
4: एस टी ई एल एल ए एन ई ओ यू एस.
1: क्या लगता है तैयबा, सही है कि गलत है?
4: जी बिल्कुल सही है.
1: बिल्कुल सही जवाब अमरीन. कांग्रेचुलेशंस, योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ. पर आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ही कांटे की टक्कर दी है. तैयबा, सो नियर येट सो फार, बट एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट.
4: गूगल गूगल, आई डिडंट डू गूगल.
1: हु कौन बोल रहा है भाई ये?
4: अमरीन.
1: हाँ चलो मैं क्या दो स्टेकेशन दिला दूंगा आपको इसके लिए?
4: नहीं नहीं थैंक्स.
1: मेरे पास एक ही है. आई एम सॉरी बट आई लव हाउ कंपेटिटिव यू आर अमरीन यार. बट तैयबा थैंक यू सो मच. अमरीन आप भी बोलो थैंक यू. थैंक यू बोलो एक बार.
4: थैंक यू अमरीन. थैंक यू फॉर द कॉलिंग.
1: थैंक यू सो मच. एंड यू हैव बीन वेरी पेशेंट. आप 7 मिनट होल्ड किया फोन लाइन, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. एंड यू कैन कीप व्हाट्सएपिंग. अभी एटलीस्ट एक और हफ्ते के लिए ये कॉन्टेस्ट है, मौके हैं आपके पास. सो कीप व्हाट्सएपिंग BSS स्पेस योर नेम टू 0543091062. बट ओवर टू अमरीन. कैसा फील कर रहे हो?
4: बहुत एक्साइटेड.
1: अब बताओ ये स्टेकेशन आप जीतोगे तो कितने खुश होगे? कितनी मेहनत कर रहे हो? एंड हाउ मच डू यू डिजर्व दिस स्टेकेशन? टेल मी.
4: आई कंप्लीटली डिजर्व बिकॉज आई वांट टू विन दिस फॉर माय चिल्ड्रन. दे आर हैविंग हॉलीडेज.
1: They're having holidays, wonderful. So we've all got our fingers crossed. लेकिन फिलहाल स्टेकेशन आप जीते ना जीते, आपने ऑन द स्पॉट जीत लिए हैं 2 मूवी टिकट्स प्लस 1 F&B वाउचर एज वेल. कांग्रेचुलेशंस.
4: थैंक यू.
1: अमेजिंग परफॉर्मेंस था अमरीन. सो वेरी वेल डन. टेक केयर.
4: थैंक
1: यू सर. एंड सर मत बोलो. एंजॉय योरसेल्फ. एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वेडनेसडे. एंड इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू कॉल एवरीबॉडी एंड टेल देम दैट यू आर वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस स्टेकेशन एट द फैबुलस रिसोर्स अलमेरिड इन रसलखेमा.
4: इंशाल्लाह.
1: टेक केयर. डोंट फॉरगेट द बिग समर सरप्राइज मेड पॉसिबल बाय आवर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिसोर्स अलमेरिड रसलखेमा. एंड डोंट फॉरगेट कल सुबह एक बार फिर ये मौका. कीप व्हाट्सएपिंग BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस. BSS स्पेस अपना नाम व्हाट्सएप करते रहो 0543091062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:06

0: मुझे लगा था कि इस बात पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, बट लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मुझसे होती ही नहीं है कंट्रोवर्सी क्रिएट।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मैं बात कर रहा हूँ तो पोल क्वेश्चन जो मैंने कल हमारे इंस्टेंट पे डाला था 106.2 बिग एफएम के, इज एमएस धोनी द ग्रेटेस्ट एवर ऑल फॉर्मेट क्रिकेट कैप्टन दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, यस और नो? मुझे लगा यार थोड़ा तो 50-50 होगा, एंड सिड हाउ कैन यू आस्क, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, ऐसा होता नहीं यूजुअली, वो नहीं हुआ। 91% ऑफ यू सेड यस ही इज द ग्रेटेस्ट, बट आई एम श्योर द 9% ऑफ यू जिन्होंने नो कहा, या दे मस्ट बी थिंक ऑफ अ सर्टन सौरभ गांगुली, डेफिनेटली ये थॉट तो आपके मन में हुआ ही होगा यार। बट व्हाट अबाउट दादा, व्हाट अबाउट सौरभ गांगुली? अबाउट दादा इज दिस दैट टुडे 8th ऑफ जुलाई इज हिज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू वन ऑफ द वेरी ग्रेट captains that India has produced. Let me not create, try or create things that I cannot, which is a controversy. So, happy birthday to Dada कहते हुए, आज का Bollywood सवाल भी उन्हीं के ऊपर। अब आप कहेंगे यार दादा और Bollywood क्या connection? This is the big Bollywood quiz, chance for you to win 2 open movie tickets. The question for you, very very simple. दादा की एक बायोपिक आने वाली है, सौरव गांगुली बायोपिक में, सौरव गांगुली का रोल कौन से एक्टर प्ले कर रहे हैं? Who is going to play Saurav Ganguly in the Saurav Ganguly biopic? That is the question. Very simple. If you think you know the answer, give me a call right now, 800-1062 per. He's got great comic timing, by the way. And ye awaaz suniye, bataiye kaun hai?
2: Iska bhai hamari beti ko bhagane ki planning kar raha tha.
3: Arre kaisi baatein kar rahe ho uncle ji? Iske paas riksha karne ke paise nahi, aapki beti ko kahan se bhagayega?
2: Acha, to zara poocho isse, hamari beti ke saath sabzi mandi mein kar kya raha tha?
3: Ye kar raha tha.
2: Chuski chus raha tha. Lo sun lo.
0: बच्चे तो चुस्की चूसेंगे ही, ये कौन बोल रहा है? Who is this person in this scene? One of the voices is the guy who's playing Saurav Ganguly in Saurav Ganguly's biopic. अगर आपको सही जवाब पता है, give me a call right now, 800-1062. You could win 2 open movie tickets.

0: आजकल 1.2 और 2.0 यानी कि पुराने वर्जन और नए वर्जन में इतना कम फर्क होता है कि बताना पड़ता है कि नहीं, ये नया वाला है, दिस इज कमीना 2.0 फ्रॉम बेबी डू डाई डू, विच इज लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ कर मर कर, जो सरनेम है वो हुमा कुरैशी का, खुद की प्रोड्यूस की ये फिल्म है, खुद की स्टार की भी फिल्म। इफ यू वॉच दिस फिल्म देन लेट मी नो या व्हाट योर रिव्यू इज, सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर।
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And do not forget, you can discover four unique dining destinations: Paros, Nonia, Shamiana, and TJ's, all at Taj JLT. Enjoy stunning rooftop sunsets, Mediterranean flavors, and chic vibes at Paros. Savor authentic Asian delicacies and vibrant ambience at Nonia. Experience all-day dining at Shamiana and a lively social scene at TJ's. Make your weekends memorable. Weekends sirf do din dur hai. Nisi brunch every Friday at Paros, retro brunch every Sunday at Nonia, and the popular evening brunch at TJ's. Here's Diljit Dosanjh with Lover. फिलहाल हम खेलते हैं बिग बॉलीवुड क्विज। द क्वेश्चन इज, सौरव गांगुली की बायोपिक में गांगुली कौन बने हैं? एक्टर का नाम अगर आप पता है, कॉल 800-1062।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Listen to her every day.
2: Mugambo, khush hua.
3: Ab har sham hum gaadi mein karenge karaoke.
1: Karaoke.
3: Track sunake track pe hi gaana hai apne.
4: अब है जुदाई का मौसम, तो पल का मेहमान, कैसे थमेगा गाना, कैसे थमेगा तूफान।
3: ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहमान भी भाग जाएंगे।
4: सही स्विच ऑफ ना कर दे।
3: नहीं नहीं, पता चले चक्कर में मेरी क्लास लग जाए। मुझे लगता है द मेल वर्जन वैंडी ने ज्यादा अच्छा गाया।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: It's 10:26 on the clock on this Wednesday. So let's take a look. सबसे पहले at the capital Abu Dhabi में काफी सन्नाटा है सुबह से, कोई ट्रैफिक नहीं, लॉन्ग वेट कंटिन्यू नजर ना लगे। देन देयर इज 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, यू विल फाइंड 5 टू 6 मिनट डिले एट बोथ दीज आर्टरीज साउथ बाउंड। देन देयर इज अ बिट ऑफ traffic in both east and west direction, S112 pe industrial area 6 in Sharjah. Bit of congestion also has built up at Jadaf, going towards Jadaf at 66 Dubai Alain Road, and 3-4 minute ki der to aapko milegi hi at 44 Alkhel Road going towards Business Bay from D3.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: Prem bhai,
7: are gira to

0: राम चाहे लीला भूमि त्रिवेदी की आवाज, दिस इज बिग 106.2 एंड नाउ द क्वार्टर फाइनल लाइनअप एट द फीफा वर्ल्ड कप इज ऑल सेट. सबसे पहले इज गोना बी फ्रांस टेकिंग ऑन मोरक्को एंड दिस इज गोना बी कल रात को यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग 12 AM. देन फ्राइडे रात को स्पेन वर्सेज बेल्जियम, उसके बाद नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड द बिग वन 1 AM ऑन संडे मॉर्निंग विच इज लाइक सैटरडे नाइट, एंड देन संडे मॉर्निंग 5 AM अर्जेंटीना वर्सेज स्विट्जरलैंड. इट्स ऑल हैपनिंग एट द फीफा वर्ल्ड कप. कंट्रोवर्सी ऑन एंड off the field, of course, you know, lots of decisions, referee ke khilaaf, VAR, and wo World Cup hi kya jisme kuch controversy na ho yaar. But the question is, aap kahan par World Cup dekh rahe hain? Main batata hoon aapko, you can catch every World Cup match live at City Max Hotels ka official fan zones across Dubai. If that doesn't make you scream goal, they're broadcasting games past 3 AM as well. Very important for especially the quarterfinal stage. You can cheer for your team on giant screens at the Huddle in Dubai, Al Barsha at the Mall, and Brew House in Business Bay. Dig into exclusive World Cup food specials such as FIFA 11 platters and more that are created just for match days. Score happy hour deals, select beverages ke saath that start at 24 dirhams at the Huddle Al Barsha, 12 PM to 9 PM daily. Head to Huddle Bar Dubai for select beverages, 31 dirhams plus 25% off your total bill, 12 PM to 9 PM daily.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब वी डोंट हैव समथिंग टू सेलिब्रेट हियर इन द यूएई, समथिंग दैट इज लाइक वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड बीटिंग, कुछ ना कुछ बड़ा रिकॉर्ड टूट रहा होता है या यू नो सम अचीवमेंट दैट मेक्स अस रियली प्राउड टू कॉल दिस वंडरफुल कंट्री आवर होम. एंड व्हाट्स इन ऑन द मेन्यू कार्ड फॉर दिस वेंसडे मॉर्निंग 8th ऑफ जुलाई, द वर्ल्ड्स फर्स्ट. ऑफ कोर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट, वी आर नॉट हैप्पी विद रीजन फर्स्ट और यू नो लोकली फर्स्ट, नो, वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्पस बिल्ड कमर्शियल वर्टिपोर्ट का अप्रूवल मिल गया है फॉर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ऑपरेशंस इन दुबई. वर्टिपोर्ट ऑफ कोर्स एयरपोर्ट स्टाइल स्टेशन फॉर फ्लाइंग टैक्सीज, टेक ऑफ पैड्स होंगे, लैंडिंग पैड्स, चार्जिंग पॉइंट्स यहां पर होंगे, पैसेंजर एरियाज एंड सेफ्टी सिस्टम्स. तो द यू नो यूएई जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी जीसीएए हैज प्रोवाइडेड दिस अप्रूवल एंड दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अब अप्रूव कर दिया है इस बिल्डिंग को. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द बिल्डिंग अप्रूव्ड, इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेफ्टी अप्रूवल्स दैट हैव टू बी टेकन, और द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, द मैनेजमेंट सिस्टम्स के सेफ्टी वगैरह सब कुछ चेक हो गया है. एंड व्हाट्स गोइंग टू बी इनसाइड the VDX Vertiport, which is the four story facility, 3100 square meters, two takeoff and landing pads, rapid charging for electric aircraft, and up to 170,000 passengers a year. Sci-fi is very soon going to turn into reality.

0: जवानी नहीं बचपन की यादें, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बच्चे बट बड़े भी टॉय स्टोरी को एंजॉय करते हैं उतना ही।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: अब और भी एंजॉय करेंगे बिकॉज़ पापा जॉन द टॉय स्टोरी 5 पिज़्ज़ास हैव लैंडेड ब्रिंगिंग मूवी इंस्पायर्ड फ्लेवर्स टू योर नेक्स्ट मील। ट्राई द स्पेस रेंजर रॉनी लोडेड विद डबल पेपरोनी फॉर अ बोल्ड मीटी बाइट। राउंड अप योर एपेटाइट विद द शेरिफ्स राउंड अप टॉप विद बारबेक्यू चिकन एंड अनियंस। रीच फॉर द पाई एंड एंजॉय द डिलीशियस कॉम्बो ऑफ इटालियन सॉसेज एंड banana peppers or any two or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza, Papa John's, order now.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae। फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE, कॉल 800-ALFRED-247। Big 106.2. That's My Song by E. &

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलखूस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
4: नेम प्लेस मूवी थिंग इज द नेम ऑफ द गेम, ठीक है? चलो, द फर्स्ट लेटर दैट आई एम गिविंग यू इज द लेटर ए। ए से आपको मुझे बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम, गो।
5: अनिल कपूर।
4: वेरी गुड। ए से बताओ मूवी का नाम।
5: अंदाज।
4: वेरी गुड। ए से बताओ प्लेस।
5: प्लेस आंध्र प्रदेश।
4: ए से अब बताओ थिंग। इससे हवा आती है, गर्मियों में बहुत काम होता है रे।
5: Oh my God.
4: AC, air conditioner बोल देते।
5: AC, oh yeah.
4: this game seems like it's going to be very easy, लेकिन timer की आवाज सुन के इंसान सब भूल जाता है। But if you think you can ace it, all you've got to do is call me 800-1062 पे। I play this game every day, it's last hour में। This is name, place, me.
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
3: कर ही नहीं सकते, चाह भी तो नहीं कर सकते हो.
4: नेम प्लेस मूवी थिंग इज द नेम ऑफ द गेम, ठीक है? चलो, द फर्स्ट लेटर दैट आई एम गिविंग यू इज द लेटर ए. ए से आपको मुझे बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो.
5: अनिल कपूर.
4: वेरी गुड. ए से बताओ मूवी का नाम.
5: अंदाज.
4: वेरी गुड. ए से बताओ प्लेस.
5: प्लेस आंध्र प्रदेश.
4: ए से अब बताओ थिंग. इससे हवा आती है, गर्मियों में बहुत काम आता है.
5: Oh my God.
4: AC, air conditioner बोल देते.
5: Oh yeah.
4: This game seems like it's going to be very easy, लेकिन timer की आवाज सुन के इंसान सब भूल जाता है. But if you think you can ace it, all you've got to do is call me 800-1062 पे. I play this game every day. It's last hour में. This is name place me.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 p.m. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Sea. The Pakistan-registered Boeing 737 reported a malfunction in its navigation system. Prosecutors have released new surveillance footage that they say shows the man accused of killing the conservative activist Charlie Kirk running across a rooftop after last year's fatal shooting. The video was played on the second day of a preliminary hearing for the accused Tyler Robinson in a Utah court. Australia's biggest telecommunications company, Telstra, has issued an apology to customers for a major nationwide outage that disrupted calls, texts and data across the country. Communication issues affected regional rail networks in Victoria and New South Wales. And the mayor of New York, Zoran Mamdani, has warned that a central Manhattan skyscraper near to Grand Central Station remained at risk of collapse. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: बिल्कुल सही. हां जी, 104 ऑन द बिग क्लॉक, ज़ोरा के साथ राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. आई कीप यू कंपनी ऑन द बिग मिक्स ऑल द वे अंटिल 5 PM. 4 घंटों के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट फॉर यू. यार, वी गोना किक स्टार्ट दिया विद अ वेरी वेरी फन गेम. इट्स कॉल्ड द बिग बॉलीवुड अंडर कवर, जहां पे मैं आपको कुछ क्लूज देती हूँ एंड आपको उन क्लूज को सुन के बताना है कि आज मैं किस सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ. आज जो सेलिब्रिटी है जिनका मैंने नाम डिसाइड किया है टू यू नो जस्ट टीज यू विथ, ही इज वेरी फेमस ब्रदर. बस ये तो पहला हिंट दे दिया मैंने आपको और 3-4 और क्लूज दे दूंगी, बट फॉर दैट यू गोना हैव टू लिसन टू मी एंड उसके बाद मुझे बताना होगा कि ये कौन है जो आज अंडरकवर है. लेट्स किक स्टार्ट द आवर विद बादशाह एंड अरिजीत सिंह. गाने का नाम सोलमेट, राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. अ वेरी गुड आफ्टरनून.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ये जो वक्त है यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 109 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिल्कुल सही यार, Zohra के साथ all the way until 5 on The Big Mix. फिलहाल इस घंटे में making your hour interesting with The Big Bollywood Undercover. ये एक ऐसा गेम है जहां पे मैं आपको चार क्लूज देती हूँ. वो क्लूज सुन के आपको बताना होता है कि मैं किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ. Who is undercover today? Okay, आज की जो हमारे सेलिब्रिटी है, पहले तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया है ना, ही इज अ वेरी फेमस ब्रदर. मतलब ये दो भाई है जो बहुत फेमस है. एनीवे, एक भाई की मैं बात कर रही हूँ. I'll start with a little bit of a difficult clue, and I'm not sure many people know this about him. He was born as Vijay Singh. इनका नाम जो अभी है, जो इनका स्टेज नेम है, वो एक्चुअली इनका नाम नहीं है, इनका रियल नेम. इनका रियल नेम, he was born as Vijay Singh, जो इनकी मम्मी ने नाम रखा था. recently he made a very very impactful comeback in the recent few years. He's made a very impactful comeback, and especially इनका जो character था of Abrar, वो बहुत ही ज़्यादा famous हुआ. And after that he's become, I think, recent times के सबसे ज़्यादा iconic villain. He is not a very good dancer. ये आपका last clue है, क्योंकि इनके जो थोड़े dancing clips आपने देखे होंगे 90s के, उसका मजाक बहुत उड़ा है. He's actually not bad, but because of that few clips, उनको ऐसे बोला जाता है कि यार इनसे तो नहीं होता. So who do you think I'm talking about? He was born as Vijay Singh. He recently made a very very impactful comeback as the character Abrar, and after that particular role, he's become one of the most iconic villain in recent times. He is not a very very good dancer. He's very average that way, and इनके थोड़े memes बने हैं dance को लेके. Who do you think I'm talking about? अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, he's also a very famous brother. ये दो भाई हैं. अगर आपको पता है मैं किस भाई की बात कर रही हूँ, मुझे कॉल करो ऑन आर टोल फ्री नंबर 800-1062. टेल मी हु आई एम टॉकिंग अबाउट. 800-1062, दैट्स आर टोल फ्री नंबर. कैन यू गेस हु एम आई टॉकिंग अबाउट ऑन द बिग बॉलीवुड अंडरकवर?

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उदी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning, The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
3: Mugembo. खुश हुआ।
4: अब हर शाम हम गाड़ी में करेंगे कारियोकी।
2: कारियोकी
4: ट्रैक सुनाती हूँ, ट्रैक पे ही गाना आते हैं।
5: अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान।
4: वाह,
5: कैसे थामे का ना,
4: तूफान। ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहमान भी भाग जाएंगे। नहीं नहीं, पता चले इस चक्कर में मेरी क्लास लग जाए। मुझे लगता है द मेल वर्जन वैंडी ने ज्यादा अच्छा गाया।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: Traffic ahal filhal E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road. The usual traffic is starting, picking up from D83, going all the way until S112. Wahan pe aapko mil jayega motor traffic for about 4 to 10 minutes. Uske alawa aapko milega ek car accident on E11 Sheikh Rashid Road. If you are heading towards Nahda 1 Itihad Street, agar Khabesi Street ke paas, aapko mil jayega ek car accident which is causing about an 8 to 9 minute delay on that road. Airport Street, D89, thoda sa bumper to bumper traffic aapko mil jayega, especially D62 Nadal Hamar wali junction ke paas, kam se kam 10 minute ka wahan par delay. Any other traffic update aap bata sakte hain 4305 pe.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: Tum apne aap ko bahut pasand karti ho na?
8: Bahut. Main apni favorite hu.
2: Ye hai Zohra on the Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हाँ जी बिल्कुल सही, Zohra के साथ on the Big Mix. We are playing the Big Bollywood Undercover. मैंने आपको दिए थे चार clues. He was born as Vijay Singh. He made an impactful comeback as Abrar. सबसे iconic villain ये रहे हैं recent times के. And dance उतना अच्छा नहीं करते हैं. मैं किसकी बात कर रही हूँ? मुझे बताएंगी निशात. Hi निशात, क्या हाल है?
2: मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो?
1: बिल्कुल बढ़िया यार. आप कहाँ पे जा रहे हो? ड्राइव कर रहे हो, पता चल रहा है मुझे.
2: हाँ ड्राइव कर रहे हैं, अभी हम दुबई जा रहे हैं.
1: हैं दुबई जा रहे हैं, कहाँ से? ओहो हो,
2: ट्रैफिक में फंसे हुए.
1: इस टाइम पे ट्रैफिक मिला हुआ है आपको शारजा से आते हुए दुबई?
2: हाँ ना,
1: देखो कितनी यूजफुल कॉलर है मेरी. कॉल करके कंपटीशन में पार्ट भी ले रही हैं, सही जवाब भी दे रही हैं, ट्रैफिक अपडेट भी दे रही. वेदर भी बता देना कैसा गर्म है वहाँ पे.
2: तो 43
1: डिग्री है इधर. वेदर अपडेट भी दे दिया, टाइम भी बता देना जरा जल्दी से.
2: 135.
1: निशात क्या करते हो आप ऐसे?
2: एक्चुअली आई एम को-फाउंडर, अबुधाबी में एक मेरी कंपनी है और इधर एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की.
1: ओह अमेजिंग, यू आर अ बॉस वुमन. हाँ
2: यस एब्सोल्युटली.
1: चलो बॉस वुमन बताइए मुझे कि ये विजय सिंह जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये असल में कौन है?
2: ये हैं अपने बॉबी डियोल.
1: अपने बॉबी? अरे मतलब गली में रहते ना पीछे नुक्कड़ पे जो रहते अपने बॉबी डियोल. आर यू अ फैन ऑफ हिज?
2: नो
1: नो व्हाट
2: आई मीन लाइक या आई डू लाइक सम ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस.
1: रिसेंटली यू नो दैट ही इज मेड अ वेरी वेरी गुड कमबैक. या सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल स्ट्रांग कमबैक इन्हीं का रहा है रिसेंट टाइम्स आई थिंक. ये देखी थी आपने एनिमल, अच्छी लगी थी आपको?
2: मिसोजिनिस्टिक लगी.
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, क्योंकि ये मुझे लगता था मैं अकेली हूँ इस चीज में. बट मुझे आई थिंक ही पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर रियली वेल. वेदर नॉट यू लाइक द कैरेक्टर इज नॉट द क्वेश्चन, बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब.
2: वेरी गुड जॉब या एज एन एक्टर.
1: हंड्रेड परसेंट. हाँ अच्छा मुझे जल्दी से एक बात बताओ, ये एनिमल मूवी में इनका कोई डायलॉग सुना दो मुझे. शाबाश, मैं टेस्ट कर रही थी क्योंकि कभी कभी बोल देते ना अरे मैंने तो देखी है मुझे बहुत पसंद आई थी. बट यूर गुड, यूर गुड, पता चल रहा है बॉस लेडी हो, आपको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता इंसान. चलो यू गिवन मी द राइट आंसर निशा, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. होप यू आर एबल टू कट थ्रू दैट ट्रैफिक एंड रीच योर डेस्टिनेशन इन द 40 डिग्रीज आउट देयर.
2: थैंक यू,
1: हैव अ ग्रेट डे, बाय. That was the big undercover जो हमने खेला with निशात. अगर आपको भी लगता है बॉलीवुड की नॉलेज आपकी इनसे भी बेटर है एंड यू कैन गेस, आपको चार क्लू की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक क्लू पढ़ के मतलब सुन के आप बता सकते हो. Then all you've got to do is keep listening. यार मैं हर दिन इस पहले घंटे में यही गेम खेलती हूँ, द बिग बॉलीवुड अंडरकवर. वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट आवर बट विद दिस अमेजिंग सॉन्ग विच इज आरी आरी धरंदर दरवेंश से. मुझे ओरिजिनल गाना तो बहुत ज़्यादा पसंद था, बॉम्बे रॉकर्स का ये गाना था एंड आई थिंक शाश्वत सचदेव हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब रिवैम्पिंग इट एंड स्टिल कीपिंग द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग. धरंदर दरवेंश से आरी आरी ऑन द बिग मिक्स. अ वेरी गुड आफ्टरनून.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 2:07 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
4: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Takeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
7: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 36 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, ह्यूमिडिटी काफी हाई एट 68%। वेयर एक्सपेक्टिंग द हाईज टू नॉट गो अप और बियॉन्ड 36, लोज विल डिप डाउन टू अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
7: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
7: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

लेकिन डिबेट करने में बड़ा मजा आता है, झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है. सो दैट इज समथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट दिस आवर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च 64% ऑफ मेन बिलीव दैट दे कैन एक्स वाई जी. ये क्या है ये एक्स वाई जी, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं करूंगी इन सम टाइम, बट यू गॉट टू स्टिक बैक, स्पेशली इफ यू आर अ ड्राइवर या ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो या रिसेंटली ड्राइवर बने हो या बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहे हो, बेसिकली ड्राइविंग करते हो, करने वाले हो, तो ये डिबेट इज डेफिनेटली ऑफ योर इंटरेस्ट. वी विल गेट इनटू दैट इन जस्ट अ बिट. लेट्स किक स्टार्ट द आर दिल चोरी राइट हियर ऑन द पिग मिक्स.

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 3:08 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ।
4: आनंद जी आप गाते हैं नहीं गाते हैं?
5: I'm a bathroom singer, I said.
4: अरे वेरी नाइस, इतनी कोशिश कर लेना कि मैं यहाँ बैठी रहूँ, यहाँ से मेरी कुर्सी ना हिल जाए।
5: I'll try my best.
4: जी
6: पाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।
4: संजय से पूछा था, उन्होंने तो मना कर दिया कि ऐसी कोई 90s की छुपी हुई मोहब्बत नहीं थी। आनंद आपकी थी?
5: काफी थी बट इट वाज ऑल वन साइडेड।
4: अरे अरे अरे, मतलब ये 90s के रेड फ्लैग थे?
5: Yes.
4: तो किसी से शादी की या फिर शादी अरेंज मैरिज कर ली?
5: नहीं, इट वाज अरेंज मैरिज।
4: ये देखो, तो कौन सी एक याद आती है जब इतनी सारी थी तो।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: 36 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी 69% पर पहुंच चुकी है। इट्स अ ब्राइट एंड सनी डे, लोज जाएंगे आज सिर्फ 33 तक। गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोहरा।
2: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

मोहित चौहान की आवाज साडा हक एथे रख. यू नो आई जस्ट हैड दिस डिस्कशन अ फ्यू डेज बैक वेयर आई थॉट कि अगर जो गाने जिन यू नो आवाजों ने गाई हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद सम अदर सिंगर वुड दैट सॉन्ग स्टिल हैव द सेम इम्पैक्ट और वुड इट बी नहीं यार अगर इसकी आवाज इस गाने में नहीं है तो इट वुड कंप्लीटली चेंज इट फॉर मी. आई थिंक दिस सॉन्ग ऑल्सो मोहित चौहान की आवाज एड्स दैट वैल्यू. इफ यू टेक हिज वॉइस आउट एंड पुट एनी अदर वॉइस आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू ब्रिंग दैट जस्टिस. एनी वे मूविंग ऑन इन टू द लास्ट आवर ऑफ द शो. 4 बजने को आए हैं जोरा के साथ अप ऑन द बिग मिक्स. In the last hour, we are going to play Name, Place, Movie, Thing. More on that game in just a bit. But make sure to follow us on our socials, which is 106.2 Big FM. Follow us over there. Do go like our recent post because it is so, so fun. And obviously, yeah, wahan pe bhi aapke paas mauke hi mauke of winning so many amazing opportunities. So make sure to go follow us 106.2 Big FM pe.

0: कर।
1: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 4:07 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
2: Missed your morning buzz?
3: Yes or no?
4: I spent the last 5 minutes explaining to Munira the whole story about Cristiano Ronaldo. Munira, kya problem? Ke? Are you like emotional? Are you a big Ronaldo fan or what's the scene?
5: By the way, I'm not his fan. मैं उसकी बीवी की फैन हूँ. I really like the way she looks. And I swear, मुझे लगा कि यार वो बेचारी कैसी रो रही होगी, वो कैसी इमोशनल होगी.
6: This is just golden, यार अभी. क्या बात है यार. Can you? I mean. 2 minute ke liye bhi you can't like shift your gaze from the BV to Ronaldo because he's one of the best footballers. It's zyada kuch nahi, he's just one of the best footballers ever to have played game. And he
5: I really know nothing about football. Honestly, jab aapne mujhe kaha retire hua hai, maine bola ki chalo yaar, BV ne kaha hai ki bhai aapse nahi ho jayega, aap bas kar do, aap aage badho.
4: Isme bhi abhi आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो अपनी बीवी की इतनी सुनता होगा या क्या है? व्हाट इज हिज ट्रैक रिकॉर्ड? व्हाट डू यू थिंक?
5: नहीं, सुनता तो होगा. एक बार मैंने ट्वीट पे वगैरह में देखा था कि भाई कहीं लिखा था कि माय फैमिली इज बेस्ट वगैरह. डरता वरता तो होगा.
4: जी
5: हां, लगता भी है.
4: समझदार तो लगता है और समझदार आदमी बीवी से जरूर डरता है.
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: 36 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 69% पर पहुंच चुकी है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द टेम्परेचर्स टू गो एनी हायर बट इट विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 32 लेटर टुनाइट.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: Late Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, that's right. This is The Big Mix with me, Zohra, keeping you company all the way until 5. Filhal, hum khel rahe hain ek bahut hi fun game. Ye mera favorite game hai.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yeah. Yes, that is right. We are playing Name, Place, Movie, Thing. Aur game khelne ke liye aaj mere saath phone line pe hai Tanzeel. Hi Tanzeel, how are you?
3: Hi, I'm good. And you?
1: आप क्यों इतने कंफ्यूज हो गए, क्यों इतने डर गए, क्या हो गया? ऑफर तो इतने अच्छे से बात की थी आपने, अभी ऐसे लग रहा है स्क्रिप्ट आपके सामने पड़ी है, हाय हेलो भी भूल गए. अरे अरे कंफ्यूज, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, गेम हार जाओगे अगर ऐसे ऐसे खेला आपने तो. अच्छा चलो यार तंजील, क्या करते हो पहले तो बताओ. सेल्स में हूँ. फिलहाल सेल्स करने जा रहे हो या सेल्स कर लिया है या आज सेल्स करने का मन नहीं है? अच्छा ऑफिस ऑफिस, ठीक है, वेरी गुड. चलो इससे पहले आप ऑफिस पहुंचो और वहां पे और दिमाग खराब हो जाए, हम खेलेंगे नेम प्लेस मूवी थिंग. वेरी सिंपल गेम, चार कैटेगरीज आपको बतानी है. आई विल गिव यू वन लेटर, उस लेटर से 5-5 सेकंड के अंदर ईच कैटेगरी यू हैव टू आंसर, ठीक है?
3: Okay.
1: चलो ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसे लग रहा है कि आज आप एकदम सीरियस मोड में आए हो कि मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, सेल्स कर सकता हूँ, तो ये क्या ही चीज है. ओके चलो आई विल स्टार्ट विद अ डिसेंट लेटर फॉर यू, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगी आपके लिए. पहला राउंड हम इजी खेलेंगे. ओके, आई एम गिविंग यू द लेटर एम. एम यानी कि मैं बोलते ना एम, तो एम से आपको बताना है अब मुझे बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो. वेरी गुड. एम से बताओ मूवी.
3: मुझे कुछ कहना है.
1: वेरी गुड. क्या कहना है? एम से बताओ जगह का नाम.
3: मुंबई.
1: एम से बताओ अब थिंग. कम
3: ऑन. माल्टा.
1: है? है क्या क्या?
3: माल्टा.
1: माल्टा वो तो जगह है.
3: नहीं, में आता है ना माल्टा, ऑरेंज को भी माल्टा करके बोलते हैं.
1: ये माल्टा इंग्लिश में बोलते हैं? रुको मैं कंफ्यूज हो रही
3: हूँ. हिंदी में
1: तो हिंदी इंग्लिश में बोलना होता है थिंग, हिंदी वाली थिंग ऐसे कोई थोड़ा ना माल्टा झाड़ू ये थोड़ा ना बोल सकते हो आप. नहीं चलो ये डिस्क्वालीफाई, ये राउंड खत्म, मैं अब दूसरा राउंड खेलूंगी आपके साथ. अभी इंग्लिश में चीजें बतानी. ओके आई एम गिविंग यू द लेटर. डिफिकल्ट करूँ आपके लिए? चलो एन. एन यानी नो, है ना? एन से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो.
3: नसीरुद्दीन शाह.
1: वेरी गुड. एन से बताओ मूवी.
3: नसीर.
1: वेरी गुड. एन से बताओ प्लेस.
3: न्यूजीलैंड.
1: शाबाश. एन से बताओ थिंग. अब बोल दो नसीब. एन से नाक. हिंदी वाली चीजें ही याद आती है, बाकी सब इंग्लिश में बोलूंगा. क्या यार थिंग आपको नहीं सूझा कोई भी? नेट बोल देते या फिर एन से और क्या चीजें? हाँ मुझे तो नेट ही सूझा. नेल कटर. क्या यार तंजील, एक चीज में पीछे रह गए. अब तक कोई नहीं आया जिसने मुझे 4 के 4 सही जवाब दिए, पता है? थिंग में हमेशा पीछे रह जाते हैं. चलो आप प्रैक्टिस करना थोड़ी. सेल्स में आप शायद 10/10 हो, लेकिन गेम में आप 7/10 हो. चलो यार थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस तंजील. हैव अ ग्रेट डे. बाय. तंजील को 4 out of 4 नहीं मिल पाया, 3 out of 4 ही मिला. इफ यू थिंक यू कैन एस ऑल द कैटेगरीज एंड यू आर यू नो 10/10 ऑन दैट, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल मी. हर दिन मैं इस आखिरी घंटे में ये गेम खेलती हूँ. 800-1062 इज आवर टोल फ्री नंबर.

0: नमस्ते।
1: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
0: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Assuredsmarket.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

नहीं हूँ यार बैड बैड गर्ल, मैं तो बहुत ही गुड गर्ल हूँ. इट्स फिलहाल 4:51 ऑन द बिग क्लॉक. दिस हैज बीन अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग आवर फॉर मी एटलीस्ट विद द नेम प्लेस मूवी थिंग गेम जो मैं खेलती हूँ इन द लास्ट आवर. एंड इफ यू टू वुड लाइक टू प्ले, हर दिन इनफैक्ट इस घंटे मैं गेम खेलती हूँ. यू कैन ऑलवेज कॉल मी 800-1062 पे. कल भी खेलूंगी आपके साथ, मेकिंग श्योर वीकेंड आपका अच्छे नोट पर शुरू हो. विद दैट इट्स माई टाइम टू टेक योर लीव. मेक श्योर फॉलो अस ऑन आवर सोशल्स विच इज 106.2 बिग FM एंड शो अस सम लव देयर. मेरी आवाज मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. ज़ोहरा अमीन इज माई हैंडल ओवर देयर. आई विल नाउ सी यू टुमारो 1 से 5 के बीच ऑन द बिग मिक्स. Until then, stay blessed and stay tuned to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, 5:05।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 33, वेरी वेरी ह्यूमिड टुडे। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 72% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, ये है Big Thrill Mansi. दिन चाहे जैसा भी हो, घर जाते जाते हमारा सुर ताल बिगड़ा हो, लेकिन हम गाना गाएंगे. मैं हमेशा कहती हूँ ना, दो चीजें हैं जो मूड एकदम अच्छा कर देती हैं, एक अच्छा खाना और एक जैसा भी गाना. गाना makes us all very very happy. And while you're stuck in traffic, बैठे बैठे क्या करें, क्यों ना अपने अंदर का रफी, अपने अंदर का किशोर कुमार आज शाम बाहर निकाले.
1: Karaoke.
2: It's time for karaoke. I am looking for my karaoke queen या king. अगर कोई आपको lane change करने नहीं दे रहा है, ऐसा गाना गाओ, 18वां सुर लगाओ कि वो आपकी आवाज से डर के आपको lane में entry दे रहे हैं. I'm just kidding. सुरताल हो या ना हो, confidence होना जरूरी है. So let me see how many of you remember this very very popular karaoke track. मतलब 5-6 गानों के बाद कोई ना कोई इस गाने की request करता ही है कि मैं ये गाऊंगा, मैं ये गाऊंगी.

हाय हाय हाय। अगर आपने गेस कर लिया है कि ये कौन सा कैरियोकी ट्रैक है, then 800-1062 is the number to dial. This is your chance to make the traffic, the road, your concert, your stage right here on Big 106.2. And देखने आज शाम कौन ये गाना ट्रैक पे गा पाता है. देखो ऑलरेडी आ गए हैं बहुत सारे, किशोर कुमार और रफी यहाँ पे. अगर आपने पहचान लिया, 800-1062 is the number to dial.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You are welcome. कोई सुने या ना सुने, मैं आपका गाना 100% सुनूंगी और अपने साथ साथ लाखों लोगों को सुनाऊंगी. Giving you a chance. अपने अंदर का रफी, अपने अंदर का किशोर, अपने अंदर का सोनू निगम बाहर निकालने का with the karaoke. And of course, a lot of calls coming in. फिलहाल अगर आपका नंबर यहाँ नहीं लगता है, you can send me a WhatsApp. Karaoke your name to 0543091062. अब karaoke करना और गाड़ी ही नहीं है तो आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं with selfdrive.ae. If you think car rentals बहुत expensive हैं, this will definitely change your thought. आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी क्योंकि selfdrive.ae has the most affordable car rental in the UAE right now, starting from just 899 dirhams a month. Exactly 899 dirhams a month. At this price, paying more just doesn't make sense, right? कोई ownership नहीं है, कोई long term commitment नहीं है, कोई stress ही नहीं है. Just pick your car and drive. Look for selfdrive.ae. You can download the app now. Selfdrive, your car, your price, your way.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill right here on Big 106.2. Every evening while you're stuck in the traffic jam, we jam with karaoke.
2: Karaoke.
1: फंडा बहुत सिंपल है, गाना आए या ना आए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा आके बस बाजू में जो गाड़ी हो, साइड में जो गाड़ी हो, वो बंदा जो है अपने विंडोज डाउन करके देखे कि आपकी गाड़ी में क्या चल रहा है। राइट, आई हैव गॉट मिस्टर संतोष, जिनकी आवाज बड़ी अच्छी है। हाय संतोष।
3: हाय मानसी, हाउ आर यू?
1: अरे अरे, आपने और गहरी और बैरिटोन वॉइस कर लिया। हाय
3: मानसी। हाँ, वो बच्चन साहब रिटायर हो रहे हैं।
1: संतोष कैसा रहा दिन में? संतोष था आज
3: लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम अबू धाबी, वहाँ ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक।
1: मैं कह रही हूँ ना, ट्रैफिक में क्या करें, हम जाम करेंगे। तो आप गाते हैं गाना वाना?
3: Absolutely. कभी कभी भूले भटके से थोड़ी।
1: अच्छा, किसी लड़की को इम्प्रेस करा है कभी गा के?
3: बहुत।
1: ओहो, कॉन्फिडेंस बस यही तो चाहिए, बहुत। तो गाना आपने पहचान लिया है, लोगों की उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा बंद गई है। तो विदाउट फर्दर अडू आपका ट्रैक

0: ये दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा।
1: बहुत हाई कर दिए स्टैंडर्ड। मैं क्या कह रही हूँ, लड़कियां क्या लड़कियों का पूरा परिवार जो है आपसे इंप्रेस हो जाता होगा। क्या गाया है सर, मतलब मजा आ गया।
2: थैंक यू।
1: आप करते रहते हैं, मुझे लगता है कि हर पार्टी की जान संतोष।
2: नो दिस इज रैप, उस पे रोज का चालू ही होता है।
1: आई थिंक आप अभी तक सो फार सुर और ताल के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और मैं तो यहाँ ऐसे कमेंट्स देती हूँ जैसे कि बस जावेद अख्तर और अन्नू मलिक के घर से आई हूँ, बट बहुत अच्छा आपने गाया है। आई थिंक ये बहुत मुश्किल होगा किसी और के लिए अटेम्प्ट करना आपके बाद, सो माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच संतोष, यू डेफिनेटली कैरियोके किंग। क्या हुआ तेरा वादा।
2: थैंक यू सो मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मानसी, अगर कोई मेरा नंबर मांगे तो प्लीज दे देना
1: लड़कियों को।
2: हाँ और क्या
1: मुझे नंबर देने की आपकी जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही अपने नंबर बांट रखे होंगे जिस हिसाब से आप गाना गा रहे हैं। लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। हमारा बड़ा एक वीक पॉइंट होता है, बस लड़का जो है वो हमारी झूठी तारीफ करे और अच्छा गाना गा दे, बस हम वेर इंप्रेस्ड, और कुछ नहीं चाहिए हमें।
2: मैं तो पार्क में रहता हूँ भाई, कोई बुलाए महफिल में।
1: आप तो महफिल जमाते हैं सर, आप हो तो महफिल है। बहुत कमाल गाया, मैं बहुत इंप्रेस हो गई हूँ। आज के लिए एक ही लड़की से काम चलाओ, वो मैं हूँ। Thank you so much, Santosh. It was such a pleasure having you on air. You've set the bar so high कि अभी जितने भी फोन आ रहे थे वो अब नहीं करेंगे कि यार अब क्या ही गाएं हम संतोष के बाद। ठीक है, थैंक यू, बाय। यही है कारियोकी की, गाड़ी में बैठे बैठे क्या करें, गाना गाते हैं, टाइम पास होगा, दिल बहल जाएगा, दिन भर की थकान चली जाएगी, सुर और ताल लगे या ना लगे, बस माहौल बनना चाहिए।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ओए होए, संतोष ने इतना बार हाई कर दिया है कि दो तीन लोगों ने तो बोला नहीं प्लीज हमें हमें ऑनर मत लो, हमें ऑनर मत लो, हम ऐसे ही आपको सुना देते हैं। फिलहाल ये कैरियोकी हम करते हैं हर शाम, सुर और ताल लगे ना लगे दिल लगना चाहिए। फिलहाल गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं बच्चों की, बीवी कह रही है कहीं लेके जाओ, आप कह रहे हो कि यार पैसे बचाने बहुत जरूरी हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू हियर, एक फैमिली स्टेकेशन जीतने का मौका राइट हियर राइट नाउ। इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस सो दैट यू कैन बीट द हीट एंड स्टाइल, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय बाय द पूल, हैव अ लॉट ऑफ फन, अच्छा खाना खाओ, वहां पे आप गाना भी गा सकते हो। इट्स अ स्टनिंग स्टनिंग प्रॉपर्टी, बट सबसे पहले रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। टू रजिस्टर BSS, दैट इज बिग सम सरप्राइज, अपना पूरा नाम लिख के व्हाट्सएप करना है टू 0543091062।
0: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन। Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Rasal Kaima.
1: We'll play a fun game here. It's called the Spell Battle. You'll be competing with someone else. Dono hi naam randomizer dhoond ke laega. And uske liye register karna zaruri hai. If you manage to give me the right spellings, agar aap jeet jate hain, to of course aapka naam shortlist hoga for this amazing staycation. Plus you're walking away with open movie tickets and F&B vouchers. So it's a win-win situation. Paise bach rahe hain, free ki cheeze jeetne ka mauka hai. Fatafat register karo. Filhal we've got this one. Shashwat Sachdev ki awaaz.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यूरी तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Summer is here and Big Ticket is turning up the heat.
4: Win a guaranteed 20 million dirham grand prize.
3: Five more winners will take home 100,000 dirhams.
4: Play Big Spin live on the show and win up to 1 million dirhams.
3: Plus four weekly e-draw winners.
4: Turn your summer into millions.
3: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
8: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
7: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
8: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
7: चलो चले अलराज।
2: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 10 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, ma'am, Nancy, we're playing the 5-second rule. Fun game, you get 5 seconds. I give you a few categories. Aapne teen cheeze batani hoti hai 5 seconds ke andar. Filhal, Nadeem also on the phone lines with me. Nadeem, aapke office mein AC ka temperature kaun decide karta hai, yaar?
3: Meri office mein, I have my own cabin. So
2: oh my god! ये तो देखो, आप बॉस हो, हम जैसे नॉर्मल छोटे मोटे एम्प्लॉइज का ये सवाल है, तो आपके जो नॉन कैबिन एम्प्लॉइज हैं उनमें कौन डिसाइड करता है? क्योंकि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
3: हमारे जो ऑफिस बॉय होता है मॉर्निंग में, वो डिसाइड करता है कि क्या टेम्परेचर रखना है, 24-25। बट देन जब लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि भाई ज्यादा ठंड लग रही है या उनको कम टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, सो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है।
2: अगर दो एम्प्लॉइज आते हैं, एक को गर्मी लग रही है, एक को सर्दी लग रही है, तो आप क्या करते हो?
3: नहीं, मैंने ज्यादातर देखिए, यहाँ पे आई वर्क फॉर अ कंस्ट्रक्शन फर्म, तो मेरे प्रोजेक्ट पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे रूम्स होते हैं, एक रूम में दो लोग तीन लोग बैठते हैं, तो वहाँ इतना नहीं इश्यू होता है। बट हेड ऑफिस में इट्स लाइक अ बिग हॉल, तो वहाँ पे इश्यू होता है। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे लोग लड़ते तो नहीं है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ज्यादातर लोग अपना स्वेटर या जैकेट अपने पास,
2: व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। जिसको ज्यादा ठंड लगती है वो अपना जैकेट वैकेट टोपी वो भी पहन के बैठे। हम जैसे लोग हैं जिन्हें गर्मी लगती है, हमारे यहाँ तो सारा दिन यही चलता है, मैं 22 पे करती हूँ, कोई 25 पे करता है, कई लोग आके ऑफ कर देते हैं। सो या इट्स अ वेरी बिग इशू स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। फिलहाल नदीम, विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 second रूल। यू गेट 5 seconds, आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी है 5 second के अंदर। ऑल द बेस्ट।
1: 5 second रूल।
4: ओह या।
2: Three things that are green in color and you can eat.
3: Vegetable
2: कौन से सर? कौन से? मेथी, पालक, ब्रोकली,
3: cucumber.
2: हो गया टाइम खत्म, 5 second, 5 second, फटाफट खेलना है। तीन बॉबी देओल की मूवीज। आपका फेवरेट कौन है फिर?
3: फेवरेट कोई नहीं है, बट आई लाइक शाहरुख खान।
2: ओके, तो तीन शाहरुख खान की मूवीज।
3: जवान।
2: अरे फटाफट खेलने वाला गेम है ये सर, इतना सोच सोच के नहीं, जो दिल में आ रहा है वो जुबान पे आना चाहिए। तीन ऐसी चीजें जो आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में अच्छी नहीं लगती।
3: उनका लेट आना, बहुत ज्यादा फोन, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना फोन पे, और
2: 5 second हो गए थे, बट मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई आपका एम्प्लॉय सुन रहा है तो उसके काम आ जाए। 5 second का भी खत्म हो चुके थे। 3 things that you pick from a hotel room. टाइम ही खत्म, कुछ नहीं, शैम्पू कंडीशनर भी नहीं उठाते हो आप?
3: नहीं, यूज करके छोड़ देते हैं, उठाते तो नहीं।
2: देखो ये जिनकी सैलरी अच्छी होती है ना, वो ये करते हैं, ये अमीरों की निशानी है, शैम्पू कंडीशनर नहीं उठाते हैं।
1: 5 second rule.
4: Oh, yeah.
2: Tavi, you've got your own cabin and we're fighting for the AC remote. But I have to say, Nadeem, बहुत खराब खेला आपने, but it was so much fun talking to you. But genuinely, you don't pick up the shampoo conditioner from the hotel room.
3: कभी नहीं किया ऐसे।
2: wow. मुझे ना ये करना छोड़ना चाहिए, यही एक ऐसी आदत है जो मुझे अमीर बनने से रोक रही है। शैम्पू कंडीशनर, कॉफी के सैशे, चाय के सैशे, ग्रीन टी में पीती नहीं हूँ, फिर भी मैं उठा लेती हूँ कि कभी काम आएगी। थैंक यू नदीम, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय। ये 5 second रूल, इट साउंड्स इजी, लाइक आई हैव सेड, इतना आसान है नहीं। अगर आपने खेलना है, 800-1062 इज द नंबर टू डायल।

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
1: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
0: Missed your morning buzz?
2: Yes or no?
3: I spent the last 5 minutes explaining to Munira the whole story about Cristiano Ronaldo. Munira, kya problem? Are you like emotional? Are you a big Ronaldo fan or what's the scene?
4: By the way, I'm not his fan. मैं उसकी बीवी की फैन हूँ. I really like the way she looks. And I swear, मुझे लगा कि यार वो बेचारी कैसी रोती होगी, वो कैसी इमोशनल होगी.
5: This is just golden, यार अभी. क्या बात है यार.
3: Can you? I mean. 2 minute ke liye bhi you can't like shift your gaze from the BV to Ronaldo because he's one of the best footballers. It's zyada kuch nahi, he's just one of the best footballers ever to have played the game. And he
4: I really know nothing about football. Honestly, jab aapne mujhe kaha retire hua hai, maine bola ki chalo yaar, BV ne kaha hai ki bhai aapse nahi ho jayega, aap bas hi kar do, aap aage badho.
3: Isme bhi abhi आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो अपनी बीवी की इतनी सुनता होगा या क्या है? व्हाट इज हिज ट्रैक रिकॉर्ड? व्हाट डू यू थिंक?
4: नहीं, सुनता तो होगा. एक बार मैंने ट्वीट पे वगैरह में देखा था कि भाई कहीं लिखा था कि माय फैमिली इज बेस्ट वगैरह. डरता वरता तो होगा.
3: जी
4: हां, लगता भी है.
3: समझदार तो लगता है और समझदार आदमी बीवी से जरूर डरता है.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33. वेरी ह्यूमिड टुडे. 74% पे है फिलहाल ह्यूमिडिटी.
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: We're playing the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I give you a few categories. Teen cheeze batani hoti hai 5 second ke andar. Joining us. What is this behavior, Pooja? थकनी की ये पूजा, ये वाला मीम सुन सुन के सुना ही नहीं उसने. सॉरी कह रही व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा.
2: नो आई नेवर हर्ड अबाउट दिस.
1: हैं
2: कौन सा मीम?
1: अरे वो पूजा मिश्रा वाला.
2: ओके ओके ओके ओके ओके. सॉरी सॉरी
1: लेसी है आज पूजा. कहाँ खोई है आप? ट्रैफिक में?
2: ट्रैफिक में खो गई. तुम्हारी आवाज सुनी, सोचा कॉल लगा के मैं भी ट्राई दे दूं गेम के लिए.
1: हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. कैसा रहा आपका वेंसडे सो फार?
2: सो फार इट वाज क्वाइट एट होम बिकॉज वेकेशन शुरू हो चुकी है बच्चों की, सो दे आर ऑल डे एट होम एंड You know.
1: मुझे कैसे पता होगा? यू नो मेरे नहीं है अभी तो, उनके पापा ही नहीं मिले मुझे. तुम्हें कहां से
2: आया? नो आई मीन पूरा दिन इनके शोर में ही वक्त निकल रहा है, इनके साथ खेल के, इनके साथ बस.
1: मम्मियों की छुट्टियां नहीं होती हैं जब बच्चों की होती है. फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू नो द रूल्स ऑलरेडी. 5 सेकंड मिलेंगे एंड यू हैव टू से 3 थिंग्स फ्रॉम ईच कैटेगरी. ऑल द बेस्ट.
0: 5 सेकंड रूल. ओ या.
1: 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर एम.
2: खेलने के टाइम
1: नहीं आता कुछ. माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी, मिथुन चक्रवर्ती. क्विकली नेम 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है.
2: हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम.
1: और
2: हम तुमसे
1: हम तुमसे प्यार करते हैं. टाइम खत्म हो गया, फटाफट खेलना है. 3 थिंग्स दैट यू कैन पुट इन योर कॉफी.
2: कॉफी, मिल्क, शुगर.
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस.
2: जब हम दोस्तों को खेलते हुए सुनते भी है, लेकिन जब हम खुद खेलते तो गेट लॉस्ट समय, तब तो याद ही नहीं आता.
1: हाँ, और जब दूसरा खेल रहा होता है तो गाड़ी में, अरे इतना आसान ये बता क्यों नहीं पा रहा है. 3 थिंग्स दैट आर येलो इन कलर यू कैन ईट.
2: मैंगो
1: और
2: बनाना एंड
1: टाइम खत्म हो गया. बेटा सुन रहे? बेटा मम्मी नहीं तो बता पाई 3 येलो कलर की खाने की चीजें, तो अगली बार तुम्हें बोले ना इतना भी नहीं आता तो बोलना मम्मी को. फिलहाल पूजा बहुत ही खराब खेला बट बड़ा मजा आया आपसे बात करके. होप यू आर एंजॉयिंग योर ड्राइव बैक होम एंड एंजॉय द समर ब्रेक विद योर किड्स.
2: Thank you, same to you,
1: man. अरे मैं कहाँ से same to you, बार बार ही क्या manifest कर रही है पूजा मेरे लिए. चलो bye. ये 5 second rule आपने खेलना है, एक ही rule है call करना.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Hanji, this is The Big Thrill, and this out of the show, your chance to go on a family staycation. Shortlist hone ka mauka aapke paas. Very, very simple. Agar abhi tak register nahi kiya hai, the last 10 minutes for you to register before I run the randomizer. BSS, that is Big Summer Surprise. Apna naam likke WhatsApp karna hai. Bahut sare log call kar rahe hain. Call nahi karna hai, WhatsApp karna hai. 0543091062 पे विल प्ले फन गेम हियर, इट्स कॉल्ड द स्पेल बैटल. अगर आप ये गेम जीत जाते हैं, आपका नाम 100% ड्रॉ में जाएगा फॉर द स्टेकेशन. साथ में यू आर वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. सो वीकेंड भी सॉर्टेड है. सो फटाफट से सेंड इन दोज व्हाट्सएप्स. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद शिल्पा राव की आवाज़.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 7:10।
2: हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी, ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Summer is here and Big Ticket is turning up the heat.
4: Win a guaranteed 20 million dirham grand prize.
3: 5 more winners will take home 100,000 dirhams.
4: Play Big Spin live on the show and win up to 1 million dirhams.
3: Plus 4 weekly e-draw winners.
4: Turn your summer into millions.
3: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color.
6: Insurancemarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. Insurancemarket.ae.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Alright, शाम से आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है. Time for the big summer surprise. The last 5 minutes for you to register. This is your chance to win a family staycation, beat the heat and style, relax by the pool. बच्चों की छुट्टियां हैं. Spend some quality time with your family with some great food and all of this absolutely free. Stunning property. I'm talking about Rixos Almarid in Rasal Khema. It is absolutely beautiful. But ये सब जीतने के लिए आपको पहले एक WhatsApp करना जरूरी है. BSS अपना पूरा नाम लिखना है एंड व्हाट्सएप करना है 0543091062 पे. आई विल रन द रैंडमाइजर एंड यू विल कंपीट हियर विद समवन. अब दोनों के बीच होगा एक स्पेल बैटल और जिसकी भी स्पेलिंग्स हुई सही वो आज शाम ए जीतने वाला है. ओपन मूवी टिकट्स कर्सी ऑफ वॉक्स सिनेमाज एंड एफएनबी वाउचर्स प्लस योर नेम इनफैक्ट योर फैमिलीज नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ दिस स्टेकेशन.
1: Participate in the Spell Battle Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almarid Ras Al Khaimah.
3: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी. और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And जैसा आपने अभी सुना that Vinita is the lucky one जिसका नाम जा रहा है draw में for this staycation. Plus she also walked away with open movie tickets and F&B vouchers. You could be next. Yes, it's time for the big summer surprises. Beat the heat in style. Chill by the pool. Enjoy some great food. Make lovely memories with your family. It's a family staycation. And ये सब जीतने के लिए register करना जरूरी है BSS. अपना नाम लिख के भेजना है 0543091062 पे. इनफैक्ट अगर यहाँ रैंडमाइज आपका नाम जो है वो नहीं निकाल रहा है, बार बार ट्राई कर रहे हो, इजी वे बताती हूँ. इंस्टाग्राम पे जाओ, जस्ट गो टू आर इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. एंड वहां जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. द बिग समर सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय अ प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अल मरीद इन रसल खेमा. Do not forget, कल भी आपके पास once again मौका है. I'll be playing the spell battle here at the same time and you could be next. Shortlist हो सकते हैं आप for this family staycation and also chance for you to win movie tickets and F&B vouchers. Once again, यहाँ नहीं जीत पा रहे हैं, नाम नहीं निकल रहा है, बार बार message कर रहे हैं. Instagram is the easy way out. Go and check us out. 106.2 Big FM it is.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill. Mansi. I'm making a controversial statement yahan pe marne wali hun, which is going to offend a lot of people. I'm not a fan of samosa. I never liked samosa. I'm not a samosa person, and I think that's fair. But I also understand. I know personally a lot of people जिनके लिए समोसा बहुत जज्बाती होता है. They don't just treat samosa like something they eat or snack on. Samosa एक emotion है. अब इसी emotion के चलते हुए एक बंदे ने ट्रेन रुकवा दी क्योंकि उसे उसी जंक्शन से गरम गरम समोसे खाने थे. मोर ऑन दिस स्टोरी व्हेन आई कम बैक. अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही को शाम को 4 बजे समोसा का प्यार, समोसा की मोहब्बत याद आती है, तो इस बंदे ने तो पूरी की पूरी ट्रेन रुकवा दी है. बताती हूँ क्या हुआ था, बट फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 33 and low भी आज 33 तक ही रहेगा। इससे ज़्यादा temperature drop नहीं होगा। Though we are expecting a lot of foggy mornings from tomorrow। फिलहाल very humid, 78% पे है humidity।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: समोसे को लेकर बहुत जज्बाती हो जाते हैं. देयर ऑब्सेस्ड, मतलब मोहब्बत सच्ची समोसे के साथ है. और समोसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. कई ऐसे लोग हैं आई नो पर्सनली जिन्हें 4 बजते ही समोसा खाना है और अच्छा समोसा खाना है. सो आई ऑनेस्टली डोंट नो कि अच्छे समोसे की डेफिनेशन क्या होती है. बट ये ऑब्सेशन एक अलग लेवल पे पहुंचा जब इंदौर से महू एक ट्रेन जा रही थी अगेन फ्रॉम MP वेयर आई कम फ्रॉम. एंड पीपल देयर दे लव देयर 4 बजे के स्नैक्स, चाहे वो पोहा हो, कचौड़ी हो, समोसा हो. तो इस बंदे ने ये ट्रेन ही चला रहे थे, इन्होंने ट्रेन रोक दी क्योंकि जंक्शन से इन्हें गरम गरम समोसों की खुशबू आई और इन्हें समोसे खाने थे. आई एम नॉट इवन किडिंग, जस्ट गूगल. He literally stopped the train to get garam garam samosa. Matlab samosa over schedule. This man has his priorities sorted. Matlab promotion milni chahiye is bande ko. He knows the true meaning of self-love. लोगों ने बहुत कमाल कमेंट्स लिखे हैं इस न्यूज के नीचे. किसी ने लिखा है सिग्नल ग्रीन होना हो, समोसा गरम होना चाहिए. देन देयर इज अनदर वन, ब्रो डिडंट स्टॉप द ट्रेन फॉर अ वुमन, ही स्टॉप्ड इट फॉर अ समोसा. ही इज अ ट्रू लेजेंड. बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट बिजार न्यूज दैट आई हैव कम अक्रॉस टुडे. समोसे के लिए पूरी ट्रेन रोक दी, मतलब बाकी पैसेंजर्स को खाना हो नहीं आना हो, कहीं पहुंचना हो, डजंट मैटर. दिस मैन वॉन्टेड समोसास एंड ही गॉट देम. फिलहाल आई यू अ समोसा पर्सन? आप कितनी हद तक जाएंगे गरम गरम समोसों के लिए? हेड टू आर इंस्टाग्राम पेज, मैंने वहाँ एक स्टोरी डाली है. आई वॉन्ट नो कितने लोगों को समोसा मेरी तरह अच्छा नहीं लगता है. 106.2 Big FM, that's our Insta handle.

0: इतनी बार ही देखी है ना मैंने ये मूवी. आई स्टिल रिमेम्बर, अब आई एम गोना साउंड वेरी वेरी ओल्ड, आई रिमेम्बर दैट छोटा सा वो एक एप्पल का आईपॉड MP3 प्लेयर हुआ करता था. मैं सारा दिन साथिया के गाने सुनती थी एंड मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि मैं अपने एग्जाम्स में जो सेकेंड टर्म्स हुआ करते थे फेल हो गई थी, बिकॉज पूरा प्लान था मेरा कि मतलब हाँ मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है, जैसे ही कोई विवेक ओबेरॉय आएगा मैं उसके साथ भाग जाऊंगी. बट जिंदगी ने वो मौका ही नहीं दिया.
1: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल
0: लाल. मौका आपके पास है भागने का नहीं, स्टेकेशन पे जाने का, वो भी पूरी फैमिली के साथ. यस इट इज बिग समर सरप्राइजेस. इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट डू इट राइट अवे. BSS योर नेम टू 0543091062. वी हैव गॉट द रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ दिस वायरल इंस्टाग्राम गाना फ्रॉम धमाल 4 अप नेक्स्ट.
2: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say goodbye, good night. कल Thursday है, बस फिर एक दिन और, क्या जिंदगी होगी, weekend to weekend ही गुजारते हैं. फिलहाल weekend के plans के साथ साथ बहुत सारे और plans आप बना सकते हैं. When you head to our Instagram page, you can win a staycation, movie tickets, so much more. Go and check it out. It is 106.2 Big FM. You can say hi to me, I'm Mansi, talking, and I talk to you 5 to 9 every single evening here. So yes, time for me now to say goodbye, good night. मैं आपसे मिलती हूँ कल, up next with the big chill. It's a very long drive, very unplugged kind of a music. And अगर आप drive पे निकले हुए हैं, which I've just realized after driving के long drive पे अकेले रात को जाने का मजा ही कुछ और होता है. फिलहाल मैं ज़्यादा दूर आजकल जाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी न्यू ही हूँ ना. बट हाँ, देर इज समथिंग अबाउट ड्राइव्स एंड वी हैव गॉट द परफेक्ट प्लेलिस्ट विद द बिग चिल. फिलहाल मैं यहाँ से बाय बाय करती हूँ, मिलती हूँ कल. अंटिल देन स्टे राइट हियर, दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. गुड नाइट.

0: big chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स विद ज़ोरा वीकडेज 1-5 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट .ae Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: द नाइट शिफ्ट, ऑल योर फेवरेट म्यूजिक, बिग 106.2.